मैं तेरी वड़ी आई कोई ना वो ना जा ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बात जा कोई ना वो ना जा ने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

श्रीमान संत बाबा गुरचरण सिंह जी, श्रीमान संत बाबा सेवा सिंह जी, नानक सार संत।

राग एक संग पंच भरंगन संग आलाप आठो नंदन प्रथम राग पर वह करही पंच रागनी संग उच्च रही प्रथम पहरवी बिलावली पुन्या की गावे मंगली पुनः

राव रंग जे एक सर जाना अदवै अलख पुरख अभगामी सब घट घट के अंतर जामी अलख रूप अच्छा अनभेखा राग रंग जह रूप ना रेखा बरन चेहन सब होते न्यारा आद पुरख अदवै अभिकारा बरन चहन जह जात न पाता सत्रु मित्र जह तात न माता सब ते दूर सबंते नेरा जल थल महियल जाहे बसेरा अनहद रूप अनहद बानी चरण शरण जय बसत भवानी ब्रह्मा विष

अलख पुरक अभिगत अवधूता। जात पात जय चेहन बरना अभिगत देव अचय अन भरमा। सबको काल सबन को करता रोग सोग दो कर

फूक मल हरी का जगत हाबिबोधारी के दो आमसान ब्यास करो ई करत है। घुघु मड वासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदी मोन सदे ही मरत है। बिंद के सदैता हीर की बटैया देत बंदरा सदी उपाय नागे ही फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के भीन छीन कैसे के तरत है। भूत बन चारी छे चौना सब दूधा धारी पान के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भछैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया वृग भैया मानियत है। नव के उड़ैया दे पंछी की बंडैया दे बगला बिडाल ब्रेक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी ना ऐसे ना प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैता है भूचरी के जैया कह नव के उड़ैया सो चिरैया के बखानी है। फल के भसैता है बांदरी के जैया कह आदेश फिर तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि का हत जग आखे भसैया सो चकोर सम्मानी है। सूरज सिवैता है कौल की बढ़ाई दे चंद्रमा शिव को कवई का पहचानी है। नारायण कच्छ में तेंदुआ कह सब कौल नाम कौल जय ताल में रहते है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेन जारी रिखे के नाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओट रुक कन्हैया नाम कांस को बतैया जम दूध कहियत है। मूड रूट पीटत ना गुड़ता को भेद पावे पूजत ना ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैरी साल सदा प्रतपाल जम जालते रहत है। जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्या देह पै सहत है। निवली करम जल होम पावक पवन होम अधो मोएक पाए ठाडे न बहत है। मानो फनिन देव दानो न पावे भेद भेद अकतेब नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बादर करत घोर धामनी अनेक भाव करे ओई करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न बेचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र किशन के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और मिशन के ते वेद और पुराण के ते सिमरत समूहन के होए होए बिताए है। बोंदी मदार के ते अंशनी कुमार के ते अंशा अवतार के ते कालबद्ध भय है। पीर और पिकाम्बर के ते गने न परते ते भूमि ते होके फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कई कोसला चलते है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरा देश बड़े बड़े राजन के द्रव्य को दलते है। मान से महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मानधारी भोग भोग भूवन भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोपची कपड़ भेद ओ।

ना त्रस्तंग ना ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तू अस्तंग अभूते। तो प्रसाद पादड़ी छंद अव्यक्त तेजन भव प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वयनाश अंतोट तेजन खुड भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार अनुभूत तेजन सिद्धगार करता सदी हरदासनाथ आसन अडोल अनुभूत कर्म दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मान जय कर्म भरम नहीं धर्म ध्यान जय ने गे ने व्योधमान जय जात पार नहीं शत्रु मित्र जय ने गे नहीं चयन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय जन्म जात नहीं भरम भेग जय कर्म भरम नहीं जात पात नहीं ने गे ने पितृमान जय नाम साम नहीं बरग ब्याज जय रोग शोक नहीं सत्र सान जय त्रास वास नहीं देना जय आदंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आद नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो नांग अक्षय स्वरूप अक्षय भंग जय नेत नेत उचरंत बेद अलग रूप कथत कते जय अलग रूप आसन डोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन आनंद कई कलव जोग साधन दुरंत तन शीत घाम बरखा सहंत कई कलप एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तदप पावत न पार कई उर्द बा देशन भ्रमंत कई उर्द मद पावक झुलंत कई सिमरी शास्त्र उचरंत वेद कई कोप का कथत कते कई अग्न होत्र कई पौन हार कई करत मो कोट मृत को आहार कई करत साग पे पत्र भच्छ नहीं तदप दे होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कई वेद रीजग आदि करम को अगन होत्र को तीर धर्म कई देश देश भाग खार अटन कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नायक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरम सो भरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदप तास पायत न पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धर्म कई सिमर शास्त्र रुचर सो करम निवली आद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मक्को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जज गंधर्व गान कहूँ धूप देव कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमरित उच्चार कई भजत एक पग निराधार कई ने दे कई गे वाद कई भ्रमत दे देशन उदार कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तत तस पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तद दृष्ट देखे मुरार बिन भकत सगत नहीं परत पान भो करत होम अर्जक दान बिन एक नाम एक चेतलीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन। तो प्रसाद तोटक छंद जय जंपो जुगण जुओ जुग भय कंपो मेर पयाल भुवंग तब तापस सर्व जलेरु थलंग धन इचरत को इंद्र कुमेर बलंग अनखे स्वरूप अभेद अभियंग अनखंड अभूत अछेद अछियंग अनकाल अपाल दयाल सुअंग जय ठटिया मेर काज भुवंग अनखंड मंड प्रचंड रंग जय रचियंग देव देव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचियंग सर्व कीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाख न दो गणंग जय अंडा ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नौ खंड सचियो रस्तावस तेज अतेज कियो अनुभव पदा प्रचंड लियो से सिंदर बिंद न गिंद न गंग त्रिय जाच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव अदे अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतज उद भुजंग किय देव अदेव सराज पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जो जुजंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भोंग जय जंप किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जज भुजंग दिए गज बाज रसाधिक पांच गणंग भूत अभूत भवान भुवंग जय अंड सेत जय रजन रज भूम काल पताल जलंग रज पावक पान प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भो मेरा का निवासितंग रज रोज का द चंद्र वृतंग दुध चंद दिनिसा दीप दई दे पावक पान प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए
जय लोक छतर जा चार रचे नर गंधरा देव अधेव सचे अन धूता भूता छूत मतंग अन गाद अभ्याद अनाद गतंग अन खेद अभेद छेद नरंग जय चार चतर दा चक्र फिरंग जय रागना रंगना रेग रुखंग जय सोगना भोगना जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आज सिरंग जय बंदा देव अदेव नरंग गण किन्नर जज भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज ब्रितंग जय पारना पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप दंड प्रभा जय जमपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब आनंद कह जय भूत अभूतना भेद लह जय वेद पुराण कतेब जपै सो सिंध अदो मुक्त आप तपै कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नय कृपा निध पान पर जय फोकर धर्म सब तज है चित कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर को तर भव भूल ना दे पुनर्धर है एक नाम बिना नय कोड वृति वेद उचार सा सुति जो वा रस के चस के रस है त्यो भूल ना काल फंदा फस है सौ प्रसाद नाराज छंद अगंज आद देव है भंज भंज जानिए भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त वृद्ध दा सजीव सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है छेद तेज मानी है सदैव सिद्ध सिद्ध दा प्रताप पत्र जानी है ना राग रंग रूप है ना रोग राग रेख है दोग दाग दक है भूता भरम अभेक है ना तात्मा जात है ना पाचन वरण है देख असेग अभेक है सदैव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्व भरण है जमी जमान के खय सदैव करम भरम है अद्वैक है अभेक है लेख ना जानी है सदैव सर्व ठौर में विशेख आन मानी है न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण अकुरान नेत नेत कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भ्रम में बताइए गंज आदेव कसु कस पाई है जिमी जवान के विकह समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीनो मकान प्रमाण तेज मानिए न देह है न गेह न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दोग है न दाग है न द्वैक है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साग है न संग है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न शाह है न शाह को कुमार है न नेह है न गेह है न देव को बनाव है न छल है न छिद है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अखल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र की विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैक है न भेक है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदैव दयाल रूप है अगंज है भंज है भर्म है भूत है छेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलिया रूप राग रंग है न द्वैक है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चयन वर्ण है व्यंत है अनंत जानिए अभूम अभिज है सदा छे जवानिए न आद है न ब्याद है न गाद रूप लेखी है अदोक है अदाग अक्षय प्रताप न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज सी विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोह कार है न आद है न गाद है न ब्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेख रार है हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपी नराधपी करण सेव है सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आत जे बड़े तपस्पति विशेखी है
ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਕਰੰਤ ਪਾਠ ਪੇਖੀਐ ਅਗਾਧਾ ਦੇਵ ਕੀ ਅਨਾਦ ਬਾਤ ਮਾਨੀਐ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਤਰ ਸਤਰੁ ਸਨੇਹ ਜਾਣੀਐ ਸਦਿਉ ਸਰਵ ਲੋਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਰਹੈ ਤੁਰੰਤ ਦਰੋਹ ਦੇਹ ਕੋ ਅਨੰਤ ਭਾਂਤ ਸੋਧ ਹੈ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਆਮਲ ਛੰਦ ਰੂਪ ਰਾਗਨਾ ਰੇਖ ਰੰਗਨਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਹੀਨ ਆਦਨਾਦ ਅਕਾਦ ਪੁਰਖਸੋ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਤੰਤਰ ਜਾਗੋ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਹੱਥ ਕੀੜ ਭਿਖੈ ਬਸੇ ਸਭ ਠੌਰ ਮੈਂ ਨਿਰਧਾਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਤਾ ਜਾਗੋ ਮੰਤਰ ਮਾਤਨਾ ਮਿੱਤਰ ਸਰਵ ਠੌਰ ਬਿਕੈ ਰਮਿਓ ਜੈ ਚੱਕਰ ਚੈਨ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਆ ਦੇਵ ਦਾਰ ਮੁਰਦ ਅਨਾਦ ਨਾਦ ਅਨੰਤ ਆਦ ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅਭਿਖਾ ਦੇਵ ਦੁਰੰਤ ਦੇਵ ਭਿਓ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜੈ ਮਰਮ ਬੇਦ ਕਤੇਵ ਸਨਕ ਅਵਸਨ ਕੇਸ਼ ਨੰਦਨ ਪਾਵਈ ਨਾ ਹਸੇਵ ਜਜ ਕਿਨਰ ਮੱਛ ਮਾਨਸ ਮੁਰਖ ਉਰਗ ਅਪਾਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਪੁਕਾਰਹੀ ਸੋ ਸਿਖਰ ਅਮੁਕਚਾਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਪੁਕਾਰਹੀ ਸਿਵ ਸਕਰ ਅਮੁਕਚਾਰ ਸਰਬ ਸਪਤ ਪਤਾਰ ਕੇ ਤਰ ਜਾਪ ਹੀ ਜੈ ਜਾਪ ਆ ਦੇਵ ਗਾ ਤੇਜ ਨਾਦ ਮੁਰਦ ਤਾਪ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਵੈਕਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਕੀਨ ਸਰਵ ਠੌਰ ਰਹੋ ਵਿਰਾਨ ਧੀਰਾਜ ਰਾਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜਾ ਛਕੰਦਰ ਦੇਵ ਦਾਨੋ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਛਤਰੀ ਮਾਹੇ ਬੈਸਰੰਗ ਕੇ ਬਿਖੇ ਬਿਰਾਜੇ ਸੂਦਰ ਵੀਵ ਨਾਹੇ ਗੂੜ ਗੌਣ ਨਾ ਭੀਲ ਭੀਕਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇਗ ਸਰੂਪ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਨਾ ਮਰਦ ਉਰਦ ਨਾ ਭੂਮ ਕਾਸ ਅਨੂਪ ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰਮ ਨਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿਹੀਨ ਤੀਰ ਜਾਤਰ ਨਾ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਗੋਰ ਕੇ ਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਬ ਸਪਤ ਪਤਾਰ ਕੇ ਤਰ ਜਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋਤ ਸੇਸ ਨਾਮ ਸਹਸ ਫਨ ਨੇਤ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਸੋ ਸੋਧ ਹਟੈ ਸਵੈ ਸੁਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾਨੋ ਸਰਬ ਗਾਏ ਗਾਏ ਹਟੇ ਗੰਧਰਵ ਗਵਾਏ ਕਿੰਨਰ ਗਰਭ ਪੜਤ ਪੜਤ ਥਕੇ ਮਹਾਕਵੀ ਗੜਤ ਗਾੜ ਅਨੰਤ ਹਾਰ ਹਾਰ ਕਹਿਓ ਸਭੂ ਮਿਲ ਨਾਮ ਨਾਮ ਦੁਰੰਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਲਖਿਓ ਨਾ ਸੇਵ ਕਤੇ

जात पात ना गोत्र गाता रूप रेख ना भरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भूको भरन दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परम प्रक प्रमाथ दुष्ट हरना श्रेष्ठ करता द्यागत मैं जय गाथ भूत भव भविक भवान प्रमाण देव अगंज आज अंजना श्रीपत परम पुरक अभंज धर्म के अन करम जेता कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर मच्छ कच्छ अपार भूमका जले थले में मानिए जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक शत्रुघालक दीन दयाल मुकंद अघाट अंडन दुष्ट खंडन काल हुके काल दुष्ट हरन पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निजभाव सर्व भुक्ता सर्व युक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमरितन सर्व शास्त्र सर्व वेद विचार दुष्ट हरता विश्व भरता आद्रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव अखंड भूम का जले थले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जते जानिए सब विचार आदेव पार श्रीपद

प्रसाद धीरक तिरभंगी छंद दुर्जन दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदृत चतरासुर मारण पते धारण नरक निवारण गूढ़ गते अक्षय खंडे तेज दंडे खंड डंडे लखमते जय जय होसी मै कासुर मर्दन ब्रह्म कपर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट दंडन रूपते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विदंसन मै कमते दानो प्रहारण नरक निवारण अधम उधारण उर्ध्वाधे जय जय होसी मै कासुर मर्दन रंभ कपर्दन आवृते डावरू डवंक बवर भवंक भुजा फरंक तेज भरंग लंगुड़िया फांदे अंध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टाय चमके भूकंड दमके अस्सी जमके फुंग फरंग जय जय होसी मै कासुर मर्दन रंभ कपर्दन दय जिणंग चंडासुर चंडन बंड बिमंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन धुजा फरंकन फणी फुंकारण जो जिते सरदार विबरखन दोष प्रकरखन पुष्प हरखन दुष्ट मते जय जय होसी मै कासुर मर्दन भूमकाश तल उर्द अधे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुण गते रक्तासुराचन जुदय जुद्ध प्रमाचन हृदय नराचन धर्म वृते सुरोणत अचिंती अनल बेंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय होसी मै कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शास्त्र प्रहारण साध मते सैती सनाहन अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज अतुलंग जय जय होसी मै कासुर मर्दन भूम काल जलंग चाचर चमकारन चिच्छुर हरन धोन्द्र का द्रव मथे दाड़वी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते।

करम प्रनाशन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हुसी मय कासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म ध्वजे घुंगरु घमंकण शास्त्र झमंकण ध्वनियर फुंकारण धर्म ध्वजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे शोध सनाहे अगम थाये एक वृते जय जय हुसी मय कासुर मर्दन आद कुमारक आद वृते सुर नर मन बंधन दोष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंगणी सोहन सुंदर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन बाय पताल काश अनले संकटी निवारण अधम उदारण तेज प्रकरण तुम दबे दुख दो जयंती ज्वाल जयंती आद नाद गाद कच्छे संतता समर्पण तर्क वितरकण तपत प्रतापन जपत जीवे जय जय होसी छत्र प्रकरण आद अनिल अगाध अभे चंचला चखेंगी अलग भुजंगी तोन तरंगण तेज सरे कर कसाक उठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमन के हल्लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्तासुर खंडन सोम चक्र निसोम मथे बारज विलोचन ब्रितन विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुसन्नासे सुमृत सुवासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रंगी बेद प्रसंगी ते तुरंगी खंड सुरंग जय जय हुसी मय कासुर मर्दन आद अनाद अगाध उर्धंग घंट का विराज्य रुण जुण बाज्य भ्रम भय भाज्य सुनत सुरंग कोकल सुन लाज्य कल्प भाज्य सुख पराजय मत उरंग दुर्जन दल दज्जय मंथन रिज्जय समय न पज्जय रोह रणंग जय जय होसी मय कासुर मर्दन चंड चकर्दन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रज्वंसन जाग विध्वंसन शोध मते जालपा जयंती सत्र मथंती दोष प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हुसी मय कासुर मर्दन आज उगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आदरंगी अगाध गते ब्रिड लाज विहंडन चक्षुर दंडन तेज चंडन आद वृते सुर नर प्रत पारण पदे धारण दुष्ट निवारण दो घरे जय जय हुसी मय कासुर मर्दन बेसो विधंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तरनासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दोष प्रधरखण बितल तले अष्टाद बाण बोली बाण सद पनाहर गौ गूढ़ गते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद अनाद अगाद वृते दुख दो प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सुनाए दोष प्रदाहे अर्दल गाहे दो घरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय होसी मय कासुर मर्दन साध प्रदन दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुंद मते अष्टायद चमकण शास्त्र झमकण दामिन दमकण आदवृते ढुग ढुगी दमन के बाघ बबन के भुजा फरंग के शुद्ध गते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आज उगाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पतित धारण एक भटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चार नरक निवारे पतित धारे मुंड मथे जय जय होसी मय कासुर मर्दन धूम्र विदंसंग आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चकर्दन दान अर्दन बिडाल बधे सुर सरदार विभरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धर्म धुजे धूमराज विजुनसन श्रोण चुनसन सोम निपार निसोम मथे जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद अनिल अगाध कथे तो प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिमखियो आप करते पसार जब अभूतन भय अनंत कहो जतामत रैन तंत करता करीम कादर कृपाल अद भय अभूतन भय दयाल दाता दुरांत दुख दोग रह जय नेत ने सब वेद कहते कई ऊंच नीच की नो बनाओ सब वार पार जागो प्रभाओ सब जीव जंत जानंत जाए मन मूड क्यों ना सेवंता है कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरा सिवंत कई पलट सूरज पई पलट सूरज सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वय कह लखाए अनिशेज तेज अन भय प्रकार दाता दुरंत अद्वय अनाथ सब रोग शोक ते रहत रूप अन भय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दो हर दाता दयाल अंजन विहीन अन भंजना जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पार नहीं भेद भ्रम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अचल अपार जानी ना जाय जय रूप रे कह बास तास कह कौन भेग कह नाम तास है कवन जाय जय सत्र मित्र ने पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चय
नहीं रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जिंदगी करत पाल और दिरा सिद्धंग सर्व बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अनशेज तेज अनभेज अदाग जल थल मही बंतन तुरं जय नेत ने निरंत पायो न जय जय पैर पार दी नान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुगिया दुआर कई वेद व्यास ब्रह्मा आनंद जय नेत नेत निर्दिन उचरंत तो प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल करे ने संत उपार गनी मन गारे पच पशु नग नाग नराधिप सर्व समय सबको व्रत पारे फोकत है जल में थल में पल में कल के नी करम विचार है दीन दयाल दयानि दोखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दुख दोखन को दल दुजन के पल में दल डारे खंड खंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभार है पार न पाए सके पदमापद भेद कते भेद उचार है रोजी ही राज लोक राज रोग रोहान की रोजी न टारे कीट पतंग कुरंग भुजंगा भूत भविक भान बनाए देव अदेव खपे अहमेव ना भेव लखे भ्रम सिंह भरमाए वेद पुराण कते पुराण हसे थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पात स्यों केन श्री पदमा पद पाए आद अनंत अगाध अद्वेक सो भूत भविक भवान वह है अंत विहीना नातम आदाग अक्षेत्र अक्षय है लोकन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह है दीन दयाल दयाकर श्री पर सुंदर श्री पमावत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न भोग न भय है दे विहीन सने सबोतन नेह ब्रग अगह छह है जान को दे त जान को दे जमीन को दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरी शुद्ध सुंदर श्री पदमापत लय है रोगंते अरसोगंते जल जोगंते भव भांत बचावे शत्रु अनेक चलाओ दिखाओ तऊ तनेक ना लागन पावे राखते अपनो करदे कर पाप समुना भेटन पावे और की बात कहां कह तो सो सो पेट ही के पाट बीच बचावे जज भुजंग सो दानव दे अभे तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम काल पताल रसा चल जज भुजंग सब ऐसे न्यावे पाए सके नी पार प्रभाव को नेत ही नेत वेद बतावे खोज सके सब ही खुजिया सुर हार परे हर आतना वे नारद से चतुरानंद से रूप नारी से सब हूँ मिल गायो वेद कते बिना भेद लखे हो सब हार परे रात ना आयो पाए सके नहीं पार उमापत सत सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जय कब तो समय जग छायो वेद पुराण कते पुराण भेद निर्पाण समय पचहारे भेद ना पाए सके अन भेद को खेदत है अनुच्छेद पुकारे राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साग ना शोक ना संग तिहारे आद अनाद अगाध अभेग अद्वेग जपियो तिन ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए वो दान महाव्रत धारे देश प्रियो कर भेष तपोधन के धरे ना मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे

तो प्रसाद कबित अत्र के चलैया छे छत्र के धरैया छत्र धारी के छलैया माँ सतरन के साल हैं दान के दिवैया माँ मान के बठैया उसान के दिवैया कटैया जम जाल हैं जोत के जितैया भरत के मिटैया माँ बुद्ध के दिवैया माँ मानु के मान हैं ज्ञान के गाता माँ बुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल माँ काल हूँ के काल हैं पूर्वी ना पार पाव हिंगला हिमालय धावे गोर गर दे जी गुण गावे तेरे नाम हैं जोगी जोग साधे पवन साधना कि तेग बाधे अरब के अरब याराते तेरे नाम हैं फरागे फरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने ने जो काम है मराठा मंगले तेरी मानसो तपस्या करे दड़वे तिलंगी पहचाने धर्मधाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है रो के रोहेले मांग देश के मंगले फिर बंग सी मुंदेले पाप पुंज को मिलत है गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीश नियावे तिब्बती त्याय दो के दलत है जिने तो हे ध्यायो तीने पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है देव देवतान को सुरे दानवान को महत गंग दान को अभेद कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहूं पे ना दीन साध अधीन कहियत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है पार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहे चींटी की चिंगार पहले ही सुनियत है केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुखचार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है केते महादीन केते व्यास प्रवीर केते कुमेर कलीन जच केते जच कहियत है करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार ना पारावार पाइय ना पार पे अपार के बखानी है अदवे अविनाशी परन पूरन प्रकाशी मां रूपों के राशि अनासी कह के मानी है जंत्र हुना जा जा की बाप होना मायता की पूरन प्रभा की सो छटा ज्ञान मानी है तेज हूं को तंत्र के राशि को जंत्र के मोहनी को मंत्र निजंत्र कह के जानी है तेज हूं को तारे के राशि को सारे के शुद्धता घर के शुद्धता की सार है कामना की खाने के साधना की सहने वृक्तता की बाने के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूपों को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है के साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को गनींदा है के खुबी को दींदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल के सतरन के साले के मित्रन को भोगत के वृद्धता की बासी है जोग हूँ को जंत्र के तेज हूँ को तंत्र के मोहनी को मंत्र के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास के बुद्ध को प्रकाश के शुद्धता को बासी के बुद्ध को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देह है के शुद्धा को सर है ज्ञान को बचाए मान को दिवैया जम जाल को कटे कामना कर है तेज को प्रचंड है अखंड को खंड है महिपन को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को भरने के आपदा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है पाइये न पार पारावार को पार जाओ कीजा विचार सो विचार को निवास है हिंगला हिमालय गावे हपसी हलबी धावे पूर्वी न पार पावे आशा ते अनास है देवन के देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेवनाथ अद्वै अविनाशी है अंजन विहीन निरंजन प्रवीण के सेवक अधीन कटैया जम जाल के देवन के देव मा देव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मुह मा बाल के राजन के राजा मा साज हूँ के साजा मा जोग हूँ को जोग धरैया धर्म छाल के कामना के कर है के शुद्ध बुद्धता को हरे के शुद्धता की साथी है काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा वह छाछ कैसी छतरा ने छपा कैसी छप कालिंद के कूल के हंस निशी सिहारू हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के परासी पलावगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबादी के रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरति हरी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमावगढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगाबादी के सोई यत है हिम्मा सी हिमालय हर हाप सी हल्ला बानेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग लारव कांसी बिलंदाबाद की रति हारी की विजयारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दोरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है भखरी गंधारी गोर गखरी कर देदाचारी पावन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरा पलाव काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराजे जहां जहां जाइयत है
पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र ते अतापी ना कीरति हरि को ना पार पाई अत है। तो प्रसाद पादड़ी छंद अद्वै अनास आसन अडोल अद्वै अनंत उपमा अतोल अच्छा स्वरूप अव्यक्त नाथ आ जान बाहु सर्वा प्रमाद जाता मही बंतन प्रफुल्ल शोभा बसन जाता प्रडुल्ल बंतन दुरंत खग मृग महान जाता प्रफुल्ल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल्ल लहत मोर सिर ढुर जान मन मत चार कुजरत कमाल राजक रहीम करुणा निधान कामल करीम जाता बिलो तता प्रसो आजान बाहु अमितोज मोह रोसं बृहत करुणा निधान जाता प्रफुल्ल सुंदर सुजान बन तन महीप।

0: नहीं बोलना, भगवान नहीं बोलना, ये हिंदुइज्म झलक रहा है कि प्यारे आपां गुरु महाराज जी तो वड्डे हो गए हैं, सियाने हो गए हैं। नहीं, ये गल्लां नूं याद रखना चाहिदा प्यारियो। देवां देवी हो गया, ये पुरातन प्यारियो आदि काल तो यह चला आ रहा। जिन्हें भी इतिहास आप जी ग्रंथ पढ़ो, माता साहिब देवां जी देवी जी करके आया, माता गुजरी जी करके गुजरी शब्द आया है। ते कई बारी कई आप नाम लेंदे ना माता गुजरी जी, ते कई उन्होंने लग जाता, कहिंदे जी पूरा जी कौर लाओ, आ बोलो आ बोलो। ये प्यारियो सानू याद रखना चाहिदा कि देवां देवी देव ये शब्द दे नाल ज्यादा एलर्जी हेठ नहीं करना चाहिदा। ये अर्थां दे वल जाओ, जदों आपां अर्थां दे वल जाओगे तां प्यारियो पता लगेगा कि इहदा असल दे विच अर्थ की है करके। सो रहो विचार इस तरह माता साहिब देवां जी, जां उन्हां नूं महाराज जी ने वचन कर दिता कि हुण भाई तुसी दिल्ली नूं चल जाओ,
1: सपत्नी है जिस थां
0: ते जिथे ना ते साडे सपुतनी जी जिहड़े हन माता सुंदरी जी जिहड़े उह दिल्ली दे विच ही महाराज जी ने उन्हां नूं उत्थे छड के आए, ते उत्थे उन्हां नूं वचन करना कीता कि सुंदरी जी तुसी इत्थे रह करके ए दिल्ली दा पूरा इलाका जिहड़ा है, इत्थे सिखी दा जिन्ना भी अपना गुरु घर आदिक और भी कई अस्थाना की सेवा करवानी है, सिखी का प्रचार करना, इतों फिर आप जी पंजाब नूं भी कंट्रोल करना करो, जिन्हें गुरु घर जिहड़े उत्थे अपने बंदियां नूं लाओ, सिखी का प्रचार प्रसार करना। सच जानो प्यारियो कि सतगुरु महाराज जी ने अज जिस तरह आपां कहिंदे ना कई बारी कि बीबियां नूं कोई वड्डा अहुदा जदों मिल जांदा ते फिर कई बारी वह कहिंदे हन कि देखो जी दुनिया दे विच पहली बारी होया आ बीबी मंत्री बनी, आ बीबी नूं आ दर्जा मिलिया वह मिलिया। लेकिन प्यारियो जे आपां इतिहास पढ़ते हाँ, सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने ते बीबियां नूं सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की ही आपां प्यारियो गल करिए, ते माता जीत कौर जी माता जीतो जी जिहड़े हन जदों तक प्यारियो वह जीवित रहे ना ते उन्हां नूं सतगुरु महाराज जी ने ते लंगर का प्रबंध देना कीता, समझ लियो लंगर दे इंचार्ज सन, लंगर का पूरा प्रबंध जिहड़ा माता जीतो जी करिया करदे सी कि सारे पदार्थ लैके आउणे, जमा खर्च वही खाता उहदा बनाउणा, लंगर दे विच अज की तैयार होना, की घट रहा की वध रहा, उन्होंने लंगर का बहुत वधिया प्रबंध।

सच्चे त्रिखंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे त्रिलोक सच्चाकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा कल करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब दूर सच्चे तेरे शिव सच्ची साला सच्चे तेरे कुदरत सच्चे पातशाह नानक सत्य सच जो मर्ज मैं सुखा चिने कच मैं।

ऊपर तीर्थां सहज जग विवान लक्ष्मण संग्राम रण में छुटे प्राण लक्ष्मण लग जाते अनप्रिय पाठ पुराण जिन कृत्य करना किया लिखा आपने जान नानक मति मिथ्या कर्म सजा निशान।